0: झूठा ये कोई तरीका नहीं
1: और तुमको भी कोई तरीका नहीं।
0: मेरी उल्फत की इंसल्ट यू ना करो,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप, तुम ना रास्ता चलो।
0: यू ना तड़पाओ आशिक को देखो, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।

ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें, ये रंग में और नूर में।

सी गलियां ये मसली हुई अधखिली जर कलियां ये दिखती हुई खोखली

0: तू? अरे मेरी प्यारी काली कोयल, कहाँ छुप गई तू? अरे जुलेखा,
1: वो आ गया। देखो देखो, मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

माटी मिले। पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हल्लो। तुम्हारा नाम क्या है?

फुकनी के पहचाना मेरा नाम है हलीमा, प्यार लोग मुझे कहते हैं हलू। जब मैं पैदा हूँ पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हो तभी ये के काटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूं। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कमर लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ मैं मौज मिला।

आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं।

यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं।

कुछ

मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं झना नन झना नन झना नन नन नन कान कान कान धाता मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं झना नन झना नन झना नन नन नन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया मुरलिया मुरलिया आजे हैं ताधी थी तत कितने बेटी दिखाई राधा राधा राधा राधा सीधा दीदी सीधा दीदी थी छना नना छना नना चुम चुम

नदाय रही सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत शर्माय रही सिगदत सिगदत सागर सिंधा मुस्काय रही पलकाय रही तिन तिन तिन तिन तिन तिन तिन तिन किधर बंसी में नहर की उंगली कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की सुम सुम सुम छन न न न न न न न पर आप ही आपसे बजने लगी।

पक्षघात हुई। इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कलार की जाग उठी।

0: क्या है चित चोर?
1: 1, 2, 3, 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों।

दीम तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी तन नदी

0: जमेदार सुबेदार पीते घुड़ा खू पीते पीते चिलम चली वारे तमाकू तेरे घुंघट में फिक फिक घुंघट में फिक फिक घुंघट में फिक फिक हे हे
1: बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी
2: यो यो यो
1: बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी
2: यो यो यो यो
0: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन
2: तेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी पांकी की तुम्हारी
0: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन देखो वो चला देखो वो चला देखो वो चला रे मेरा मन हे
1: भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी
2: यो यो यो यो
1: भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

फिर कहाँ तक चले, हाय हाय फिर कहाँ तक चले, जो बेखौफ चलते हैं।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आज उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

तो पेट ही झूठ के संदक में छुपा को, संदक में छुपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घसको घसा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घस

झूठ बोला बाबा वो झूठ बोला, अल्लाह अल्लाह झूठ बोला, हसन से झूठ बोला। पर तुझको लाखो हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते संदक में चोपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाथ

0: किस्मत को अपनी आज मैं रोती बैठ को।
1: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
0: क्या हूँ?
1: चिकनी मट्टी।

0: लौटा।
1: सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है, सुर नहीं तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं बेसुरा है। म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो, तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने मैंने सुना नहीं।

0: झटका झटका
1: दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

0: मेरी रानी, अरे मैं लेके आया हूँ तेरे लिए मोहब्बत की बिरयानी।
1: ओ ओ कौन असरानी?
0: कदर मुरी ना जानी, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियाँ मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे मुझे दे नींबू का अचार और दे तीखा तीखा प्यार।
1: अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ।
0: बट यू आर माई लैला एंड आई एम योर छैला।
1: ओह अरे ओ छैला, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा।
0: अच्छा

0: को भी चले।
1: क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो?
0: हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
0: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे।

खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया

0: से चमक जाती है बिजली, खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम, आप ही ठंडी फिजाओं से जा जा।
1: अरे जा जा।

मचल कर नाच जाती है तो धड़कते दिल से मेरे मद भरी आवाज आती है। ए ए ए जा जा अरे जा जा।

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे।

पर करे इशारा, लेकिन दर्द छुपाए कैसे तीर नजर का मारा। एक अदा पे हम करते कुर्बानी ये दुनिया सारी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर बिन घायल कर दूँ ऐसा मैं हूँ शिकारी।

सजना सजना ओ सजना।

0: right, Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more.
1: Hi, Sherman.
2: आप खरे कि नहीं खरे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

0: यही खुशी है यहाँ की जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाते हम लोग मजे से उसी क्या किया रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा अब देखो